0: ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୀନ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 8002471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्ग रेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। यस्मिन् 7,30,000 कोटि रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति। सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति, उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रा संस्मरदा श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900,000,000 कोटिरूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयन्ती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रोसेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौ

0: सान्निध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इंदौरनगरस्य होलकर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी भवानी पटना श्रोताबंधु एवं आसंतु जणिनबा आज हम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम गुडिकर सूचना संपर्करी सकाळ 17:25 कार्यक्रम स्वच्छ जीवन उपस्थापना प्रफुल्ल कुमार माझी सकाळ 17:30 शुणिबे श्रीरामचरितमानस चासर कथा सकाळ 17:40 सकाळ 17:45 पुरातनी कार्यक्रम शुणिबे केतोटि ओडिसी संगीत राज्यस्तरीय प्रसारण रे कार्यक्रम पीठ परिक्रमा रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सकाळ 8:30 आकाशवाणी जयपुर केन्द्र प्रस्तुति माँ कंटा बांसुणी पीठ प्रयोजना अमित दास और रंजन कुमार बेहरा सकाळ 8:45 कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत महाकाव्य वैदेश विलासर संगीतात्मक परिवेषण प्रयोजना प्रसन्नजीत महांती और डॉक्टर शांतनु कुमार रथ सकाळ 9:00 हिंदी कथाचित्रार गीत सकाळ 9:10 शुणिबे भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 पूर्ति उपलक्षे विशेष कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी दिल्ली रो सकाळ 9:45 शुणिबे ओडिया कथाचित्रार गीत विशेष कार्यक्रम खोला झरका प्रचार करिबो पूर्वाह्न 10:10 दिन 12:00 शुणिबे हिंदी कथाचित्रार गीत केतोटी सुगम संगीत प्रचार करिबो दिन 12:30 चासर कथा दिन 1:10 दिन 1:20 शुणिबे कार्यक्रम शक्ति रूपा दिन 2:45 हिंदी कथाचित्रार गीत अपराह 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग युववाणीर साहित्ययन कार्यक्रम शुणिबे अपराह 5:30 संध्या 6:30 कार्यक्रम युवा शक्ति राति 7:25 जिला हलचल क्रम शुणिबे पूरी जिला संपर्क यह दुईट कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र गीत गजल कार्यक्रम राति 8:00 आंचलिक गीत क्रम संबलपुरी गीत शुणिबे राति 8:15 राति 8:30 स्पॉट स्कैन राति 9:15 स्पॉटलाइट राति 9:30 पब्लिक स्पीक यह समस्त कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी दिल्ली राति 10:00 प्रचार करिबो नाटक दृश्यांतर रचना बीरंची नारायण मुंड प्रयोजना सच्चिदानंद मल्लिक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम राति 10:30 शुणिबे धोंदुताई कुलकर्णी शास्त्रीय गायन राग देश। आकाशवाणी भवानीपाटना श्रोताबंधु होता आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम गुड़िकर सूचना वर्तमान रिले करी प्रचार करुछु आंचलिक संवाद आमर स्वास्थ्य एवं ओडियारे संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्ररु एई बिरती परे परे।

0: ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ। ସବୁରି ଭାଷାରେ
1: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया।
1: इंदौर रो होलकर स्टेडियम रे भारत ओ वेस्टइंडीज मध्ये रे अनुष्ठित टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज रो तृतीय मैच रे भारत 14 रन विजयी होई छि। भारत प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे समस्त विकेट हराई 223 रन करथिला। अभिषेक शर्मा सर्वाधिक 30 बॉल लु 69 रन संग्रह करथिले। जवाब रे वेस्टइंडीज निर्धारित 20 ओवर रे 7 विकेट हराई 209 रन करबाकु सक्षम होइथिला। श्रृंखलार चतुर्थ मैच आसंता 14 तारीख रे हैदराबाद रो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रे खेला जिवो। मुख्य संवाद पुणि थरे। भारतीय युववर्गों पाखे विश्व में देखाई आह्वानगुड़िकर समाधान करार प्रतिभा रही कहले प्रधानमंत्री। साउदी आरब रियाद विमानबंदर में होता आक्रमण में जड़े भारतीय नागरिक मृत, आक्रमण को विभिन्न देशर नेतृवृंदों निंदा। शक्ति भित्तिभूमि आक्रमण बंद करने को रूस और युक्रेन सम्मति प्रकाश कर आमेरिका राष्ट्रपति सूचना। पाकिस्तान खाइबर पख्तुआ प्रदेश में जरूरकालीन परिस्थिति लागू। एवं तृतीय टी20 क्रिकेट मैच रे वेस्टइंडीज को 14 रन ने परास्त कला भारत। संवाद शेष होला।
2: आकाशवाणी भवानीपाटणा श्रोताबंधु प्रचार कलु आंचलिक संवाद आमर स्वास्थ्य एवं ओडिया रे संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र रु। एबे आसंतु शुणिबा स्वच्छ भारत मिशन उपरे आधारित कार्यक्रम स्वच्छ जीवन। उपस्थापना प्रफुल्ल कुमार माझी।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, शोभ ना हो, जो राग विराग, छल कपट, दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए

0: बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
0: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
0: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास

0: संगठन के अनुसार नौ में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0112331 04 08 0112317 1717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: एचआईवी व्यापीबार चारोटी कारण रही जेपरिकी सुरक्षा विहीन जौन संपर्क एचआईवी पॉजिटिव मांग कठारु तांको शिशु को व्यवहृत छुंची किंबा सिरिंज व्यवहार करिबा एचआईवी संक्रमित रक्त किंबा रक्त उत्पादन रु संचार नेबा
2: एचआईवी भली मारात्मक संक्रमण रु बंचिबा पई सतर्कता अवलंबन करंतु एचआईवी संबंधी सतर्कता सूचना ऑनलाइन परामर्श और सहायता पई 1097 को कॉल करंतु किंबा www.breakfreeindia.org को विजिट करंतु।
1: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जन हितरे जारी।
3: श्रोता बंधु कार्यक्रम शेष गीतटी प्रचार करुछु ये जवानी हे दीवानी कथाचित्ररु द्वैतकंठरे गाइछन्ति बेनी दयाल ओ शेफाली अलवेर्स। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य। संगीत निर्देशना प्रीतम।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर, और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
3: धन्यवाद सोनू जी।
1: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
3: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डीलाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया। और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है, भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
1: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी?
2: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनापूर्ण जो विचार थे
1: जी।
2: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे, उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें, तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए, इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है।

0: इसी के साथ अगर आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है तो बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया।
1: जी
0: ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे। वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और आईबीबीआई दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। और आप अगर देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला, और होता ही है,
1: जी
0: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चन ही नहीं आता है। ये बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारे जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नए संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस लिए ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होकर आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए। तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाले थे, जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं।
1: जी
0: जी
2: डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960-1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें दो, ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा,
1: जी।
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट? जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग MSME, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1 लाख 70 हजार करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर MSME है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65 हजार कुछ MSME है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण बड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजेक्शन करते थे, तो आपको याद है नोटबंदी में जो मतलब हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट।

0: होता है। तो इसके जो फायदे हैं ना, आपने ट्रांसपेरेंट रेजीम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है। पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलेंट्री कंप्लायंस रहा है। मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सब टेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह, जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे। आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो
1: जी
0: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं, इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा। आपको
1: जी
0: कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए।
1: जी
0: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टैक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो
1: जी
2: निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ, मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए।
1: जी
2: अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं, सैलरी से मिल रहा है, वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं। और बाकी डिडक्शंस वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12 लाख 75 हजार का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रसंग उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं। किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म्स आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म्स आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्री फिल्ड फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्री फिल्ड टैक्स फॉर्म आ जाता है। और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो
1: जी
2: ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो
1: जी
2: किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उन्हें लग रहा है, ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है, पेमेंट करने के लिए उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन। यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का,
1: जी
2: वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों

0: को इस बारे में
1: जी
0: सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो
1: जी
0: इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने की वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं,
1: जी
0: उनके लिए भी इनकम टैक्स देना क्योंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया है कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं,
1: जी
0: यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सब के लिए
1: जी
0: एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है, जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूं दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है कि
1: जी
0: इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भय मुक्त हो गया है, अब जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: हाँ, काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो
1: जी
2: हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है। वो टाइम लगेगा, अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ईरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है। तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है। तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट। उन्होंने
1: जी
2: हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो। तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.5

0: 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरनमेंट होता है इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आए शुभ मोय, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेस

0: मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आए शुभ मोय, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स है, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस है उनमें एक सुगमता आए व्यापार में और उस साथ ही साथ सेफ गार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
1: सोनू जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है
0: जी,
1: उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
0: जी।
1: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं।
0: जी जी,
1: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं मैं कहूंगा कंपनी या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समान तरल होनी चाहिए। यानी कि के पहले अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने थे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
0: जी।
1: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दबा दबोच वगैरह बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है, उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतर्जातिक एक सिस्टम है, इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए, और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, एक बहुत बड़ी चीज है
0: जी।
1: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किलात पहुंचती है, वो लाजमी है, लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय, और इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया वो है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे और एक एक एड्रेस में 200-300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनीज का बेसिकली काम था

0: फॉरेन एक्सचेंज को ले आना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको
1: जी
0: याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो दिखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारे चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से,
1: जी
0: इससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इस बारे में पता चलता है, पूछ रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए, उस पर वो खबर रख सकते हैं। जी
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में, जिसमें डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है, जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेज है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज हैं उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूँ। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे, तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे, ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट, और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है, जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये लॉज हैं, अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हैरासमेंट होता है इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, मतलब ग्रोथ नहीं होता है।
1: जी
2: तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
1: जी तो शुभमय, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसका जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से, जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको बेहतर करने के लिए?
0: बिल्कुल सोनू जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है एमडीआर चार्जेस को लेकर यूपीआई में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों? क्योंकि एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे। आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद यूपीआई के बनाए हुए QR कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए, हम इसे वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको देखें तो
1: जी
0: ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है, और इस रिफॉर्म को हम अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल इसमें हम लीन हो गए हैं और हम इस पे ही टिकना चाहते हैं। एमडीआर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है,
1: जी
0: वो उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि

0: जो गरीब से और एक्सचेंज इसलिए मूलभूत है कि क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम
1: जी
0: हटना जाए।
1: जी
0: तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार कार्ड जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
1: जी
0: और यही चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए कि
1: जी
0: अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूट पाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका है
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो जरूरत नहीं होती है।
1: बहुत
0: तो ये चीजें जो गांव दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी।
0: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि वो बन किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
1: जी
0: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस बच्चा बच्चा भी यार बोल देता है, ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
1: जी
0: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जनसेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आकाशवाणी भवानी पटना श्रोताबंधु शुणुले मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 वर्ष जनसेवा पूर्ति उपलक्षे एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली। एवं आसतु शुणा कतोटी ओडिया कथचित्र गीत कार्यक्रम प्रारंभरे प्रचार करुछु सुना भाउज कथचित्र द्वैत कंठरे गाई गीता ओ अक्षय महांति। ଗୀତ ରଚନା ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି।

0: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे। मने रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टॅक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फर्म दाखल करंतु। आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: श्रोताबंधु कार्यक्रमर शेष गीतटी प्रचार करुछु कथा देथिले माँ कथाचित्ररु द्वैतकंठरे गाइछन्ते बाबुल सुप्रियो ओ साधना सरगम गीत रचना निजम संगीत निर्देशना कृष्णचंद्र।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।

0: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। पुलिस ने वाहन चालकों से ये भी कहा है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possess the talent and potential to provide them.
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
1: Delhi government is set to launch the Durga e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities

0: कभी तो हंसाए।
1: एथर शुणु नमखलाल कथचित्र गई किशोर कुमार और आशा भोसले गीत रचना कर अंजान संगीत निर्देशना बापी लहरी।
2: अरे अरे अरे ना ना ना।

0: सबु बैंक रे अलग अलग केवाईसी कागज पत्र गोटिए चाबी हे थांदा कि
1: अच्छी ना बापा सीकेवाईसी आईडी
0: सीकेवाईसी माने
1: बैंक आपण को केवाईसी डिटेल सीकेवाईसी रजिस्ट्री रे अपलोड करी थाए आउ आपण को मिली थाए गोटे अनन्य 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी जहाँ सबु आर्थिक आदान प्रदान रे वैध होई थाए गोटे जागा रे केवाईसी अपडेट द्वारा बाकी बैंक वित्तीय संस्था रे भी अपडेट होई जाए
0: वाह आरबीआई कहे
1: सुरक्षित बैंकिंग आड़ को प्रथम पदक्षेप।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: कार्यक्रमरे शेषरे अलेक्जेन्द्र विश्वाळंकर रचनार गायचंती सुहास महांती।

0: ପ୍ରଚିରକଲୁ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 8:30ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସାରଣରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୀଠ ପରିକ୍ରମା। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30ରେ ଶୁଣିବେ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀ। ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ମୁଣ୍ଡା। 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଶୁଣିବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। 15 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆକାଶବାଣୀ ଜୋରନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ। 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଣିବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଭଗବତୀ। 17 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଣିବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଝଙ୍କଡ଼ର ମା ସାରଳା। ରବିବାର 18 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣିବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ସୋମବାର ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ବାଳକୁମାରୀ। 20 ତାରିଖ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଏଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ 2 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ କନକଲତା। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत

अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शेल वॉटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभयहल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमओयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी

0: भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
4: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
5: आई वेलकम आवर डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली

0: foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सके और जीत सके। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
1: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
3: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है।

0: आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद तापूर्व यही विज्ञापन।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 3 नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच आपातकाल लागू किए जाने के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और PTI के 7 अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के कार्यकर्ता, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति और PTI के प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर भी शामिल हैं। पुलिस ने स्वाबी में PTI के 56 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को बढ़ते आतंकी हमलों तथा संवैधानिक व्यवस्था के ठप होने का हवाला देते हुए प्रांत में आपातकाल लागू किया था। आज शारदीय नवरात्र का 2 दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा,

0: शास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था, आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
6: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
7: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
1: जी

0: लगी।
1: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
0: है कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
1: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
0: भारत।
1: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
4: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊं, पंजाब।
1: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
0: बहुत मजा आएगा।
4: हाँ, बहुत मजा आएगा।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
0: हम अनेक किंतु एक।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।

0: दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए छक्के।
1: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
2: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
1: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
2: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
2: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
0: वो लोग ऊंचाई पर

0: लोग
1: साथियों,
2: बिल्कुल ठीक है।
1: आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
3: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
1: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक,
3: ये ठीक रहेगा संजय भाई,
2: यही ठीक रहेगा संजय भाई।
1: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
4: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
5: बिल्कुल ठीक।
4: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर!
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
0: अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
2: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु

0: सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में तीन गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
2: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
3: भाग रहे हैं घायल। अब कहाँ भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, इनमें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो!
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
4: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
5: आपको वहां ले चलते हैं।
4: वहां चलते
5: हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
4: आओ भाई,
6: नहीं मानसिंह,
4: आओ तो सही।
6: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैट टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
5: लेकिन जी, लेकिन
6: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
5: अरे
6: आप, तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
5: आप सुनो,
6: छुपा हुआ ना,
5: आप
6: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
5: लेकिन
6: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
5: अरे
6: जाओ
5: आप।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
4: संजय भाई, इधर आओ। क्या जगह था?
6: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
2: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: प्रचार कलु NCERT तथा CIET द्वारा प्रायोजित कर

0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯୁବଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଆଜିର ଯୁବବାଣୀରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟାୟନ, ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
1: नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
2: आरबीआई कहे
3: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।
4: कौन भाई एते दिन परे?
5: हाँ भाई, अरे सुन दाढ़ी काटिबो को केते लागिबो?
4: अरे सही हमरो 60 टंका।
5: अरे भाई एमे मात्र मो पाखरे 30 टंका कैश अछि।
4: तो देख दुईटा उपाय अछि, प्रथम अधा दाढ़ी काटि पारिबो
5: आउ अन्यटा
4: अरे डिजिटल पेमेंट करो यूपीआई द्वारा।
5: ए देखो भाई यूपीआई तो बंचे देला।
4: गोटे काम करो, फेशियल भी करे नियो, डिजिटल पेमेंट करे दबो।
5: भारत परे डिजिटल देयो प्रदान
6: सहज अटे प्रतिदिन देण
7: तेबे आरंभ करिबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।
8: दुई

0: ए गुलाब, तुम बहुत खुशनुमा हो। हर रोज तुम मेरे सामने ऐसे ही खिलते रहना और मैं तुम्हें देखकर कुछ ना कुछ लिखती रहूं अपने कोरे पन्नों पे। मुझे कुछ लिखना आए या ना आए तुम्हारे बारे में, पर मैं इन कोरे पन्नों पे इधर उधर तहरीर करता रहूं अपने कलम से। तुम कबूल करना मेरे सारे अल्फाजों को और अपनी इन पंखुड़ियों के बीच समेट लेना और बेहिसाब छूट देना मुझे, जिससे कि मैं तहरीर कर पाऊँ तेरे बारे में और पूरब से उगते हुए सूरज को बोल पाऊँ कि तुम कितने खुशनुमा हो।
1: नमस्कार भौणी।
0: नमस्कार।
1: आपणंक स्वागत करुछी आम जुबवाणीर कार्यक्रम साहित्यायनरे। प्रथमे मु आपणंक अनुरोध करिबि जे आपण निजर परिचयटि आम प्रिय श्रोतामानंकु देइ दियंतु।
0: आपण मते आपणंक ए सुंदर दुनियाकु बा सुंदर कार्यक्रमकु स्वागत करथिबा जोगु आपणंक आंतरिक धन्यवाद जणाउछि। मो ना स्वयंप्रभा मोंड, मो गाँव

0: कलम से तुम कबूल करना मेरे सारे अल्फाजों को और अपनी इन पंखुड़ियों के बीच समेट लेना और बेहिसाब छूट देना मुझे जिससे कि मैं तहरीर कर पाऊँ तेरे बारे में और पूरब से उगते हुए सूरज को बोल पाऊँ कि तुम कितने खुशनुमा हो।
1: नमस्कार भौणी।
0: नमस्कार।
1: आपणंकु स्वागत करुछि आम जुबवाणीर कार्यक्रम साहित्यायनरे। प्रथमे मु आपणंकु अनुरोध करिबि जे आपण निजर परिचयटी आम प्रिय श्रोता मानंकु देइ दियंतु।
0: आपण मते आपणंक ए सुंदर दुनिया को बा सुंदर कार्यक्रम को स्वागत करथिबा जकु आपणंकु आंतरिक धन्यवाद जणाउछि। मो ना स्वयं प्रभा मोंड, मो गा मुंड्रागुडा।
1: तेबे आपणंकु साहित्यर ए सुंदर दुनिया को स्वागत।
0: आपण मते आपणंक एते सुंदर दुनिया को अब कार्यक्रम को स्वागत करथिबा जकु आपणंकु आंतरिक धन्यवाद जणाउछि।
1: तेबे प्रथमे मु आपणंकु पचारिबी आपणंक कविता लेखिबार आरंभ केबे ओ केमिति हेला, केउ अनुभूति आपणंकु प्रथम कविता लेखिबाकु प्रेरणा देथिला।
0: मु जेतेबेले नरला नवोदयरे पढुथिलि से समयरे मु कविता लेखिबा प्रथमे आरंभ करथिलि। अब कवितार दुनियारे मु प्रथम प्रथम पाद रखिथिलि जहा मते मने अछि एटा 2015 रे कहिले चले मोर प्रथम कविता मा लेखिथिलि। कविताटी हिंदी भाषारे थिला। मोर मने अछि आज भी से तारीख 22/10/2015 थिला। मते से समयरे ज्वर हेउथिला आ मु डिस्पेंसरी रे एडमिट थिली। से दिन मा को मु बहुत मन पकाउथिली आ से कविताटी लेखिथिली।
1: सतरे आपण गोटे अनन्य अनुभूति रे प्रेरित होई निजर प्रथम कविताटी लेखिथिले। तेबे कोन आमी आपणकर सेही कविताटी सुनी पारिबा?
0: हां, आमे निश्चय सुनी पारिबा। कवितार शीर्षक मा। मा, तुमने ही तो जन्म दिया है मुझे, तुम ही तो इस जहां को लाई हो मुझे और अपने कांधे पर पकड़ के सारा जहां दिखाई हो मुझे। माँ, जब मुझे भूख लगती थी तो मेरे बिना रोए या रोते ही माँ तुम खुद समझ के दौड़ के चले आती थी। अगर खुद तकलीफ में हो तो भी उसे भुला के खुद के और बाकी सारे कामों को छोड़ के, अगर कभी नींद आ रही हो तो भी उसे मार के अपने भूख को दबा के मुझे अपनी गोदी में पकड़कर मेरे माथे पर चुमके अपने स्तन के पास लेके अमृत पिलाती थी तुम। जब मुझे नींद आती थी तो मेरे सर के ऊपर अपने हाथ से थपथपा के चंदा मामा के कविता और सितारों के कहानियां सुना के मुझे अपनी गोदी में सुलाती थी तुम। जब मैं आधे नींद से जाग जाती और रोती तो अपने सारे काम को पीछे छोड़ के दौड़ आती थी तुम, फिर से अपनी स्वर्ग से गोद में पकड़ के सुलाती थी तुम। माँ, तुम ही तो मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है मुझे, और जब मैं मेरी नन्हे नन्हे कदमों से चलते चलते गिर जाती थी तो उन कदमों को संभालना भी सिखाया है तुम्हें मुझे। माँ, तुम ही तो हर सुख दुख में डट के खड़े रहना सिखाया है मुझे, हर आफत में संभलना, हर तकलीफ में मुस्कुराना सिखाया है मुझे। माँ, तुमने ही तो जन्म दिया है मुझे। माँ, तुमने ही तो अपने जहाँ का जहाँ पना बनाया है मुझे। माँ, तुम ही तो मेरी पहली शिक्षिका हो, अ से लेकर अनंत तक सारी शिक्षा दिया है मुझे, जीवन के हर एक राह दिखाई है मुझे, सही और गलत के पहचान कराई है मुझे, बिना डरे बिना रुके बिना हारे हर राह में चलना सिखाया है मुझे।
1: अरे वाह सतरे, मातृत्व और माँ को बहुत सुंदर भाव आपण आपण कवितार वर्णना कर जड़े जुव कवयत्री भाव आपण कवित जीवन चारिपाखर लोक संपर्क समाज ए सबु मध्यरु केउटी आपणंकु सबुठु अधिक प्रभावित करे?
0: मते जणे युवक कवयित्री भावे कवितारे निज जीवन चारिपाखर लोक संपर्क समाज ओ प्रकृति ए सबु ही मते बहुत प्रभावित करे।
1: ठीक कथा, माने जणे कविकु त समस्त जिनिस ही प्रभावित करिथाय। तेबे आपण ओडिया ओ हिंदी दुईटी भाषारे कविता लेखंती, दुईटी भाषारे लेखिबा अनुभव केमिति? भाषा बदलिले आपणंक भावना बा लेखार शैली मध्य बदलि जाय कि?
0: ओडिया ओ हिंदी ए दुईटि भाषारे कविता लेखिबा अनुभव बहुत सुंदर, बहुत नियारा। आज्ञा हाँ, कविता बा कहानी लेखिबा समयरे जदि भाषा बदले हेले भावना तो बदलेनि, हेले निज लेखार शैली निश्चय बदले।
1: अच्छा, तेबे आपण तो आमको आम कविता प्रारंभरु दुईटी हिंदी कविता सुनै सारलेनी। वर्तमान मु अनुरोध करिवि जे आपणक एते सुंदर लेखार गोटिए ओडिया कविता मध्य जदि कार्यक्रमर एही पर्यायरे आम श्रोता मानंकु सुनाई देले बहुत भल हुंता।
0: हाँ, निश्चित भावरे सुनेबी। कवितार शीर्षक समय हेले आ। समय हेले दिने आ, साथी बसिबा ए नीला आकाश तले, माटीमा रकोळरे आउ दुहे स्वप्नर माळ गुंथिबा, सेठी अधा तू देखिथिबा स्वप्न थिबो ଆଉ ଅଧା ମୋର, ଗୋଟିଏ ମାଳରେ

0: महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं, युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief for whatever is due under the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
3: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body,

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: श्रोता बंधु शुणंतु कार्यक्रम संपर्कित एक विशेष सूचना। आकाशवाणी कटक केन्द्र द्वारा 2026 मसीहा शारदीय दुर्गापूजा उपलक्षे नाटकर विशेष प्रसारण कार्यक्रम एक क्रम शुणवे आसंता 16 तारीख शुक्रवार राति 10:00 नाटक देवी और दानव रचना गोपाल छट्राय प्रयोजना मनोरंजन दास। 17 तारीख शनिवार दिन 3:30 गीतनाट्य महिषासुरबध रचना गणकवि वैष्णव पाणी प्रयोजना रमापद नंद संगीत राखाल चंद्र महांति। 18 तारीख रविवार दिन 3:30 नाटक दशभुजा रचना कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक बेतार नाट्य रूपांतर मनोरंजन दास एवं प्रयोजना नरसिंह महापात्र। 19 तारीख सोमवार दिन 3:30 गीतनाट्य देवी महामाई रचना शरतचंद्र मूलिया प्रयोजना गौरव पट्टनायक एवं संगीत राखाल चंद्र महांति। 20 अक्टोबर 2026 मंगलवार दिन 3:30 शुणवे गीतनाट्य महिषा मर्दिनी रचना गोपाल छट्राय प्रयोजना झरणा दास एवं संगीत संयोजना भुवनेश्वर मिश्र। श्रोताबंधु यही कार्यक्रम संपर्कित एक विशेष सूचना।

कार्यक्रम प्रचार करुचु युव शक्ति प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय उपस्थापना सुचिस्मिता बेउरा।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन बंदिता मिश्र जुहार। पहला मुख्य खबर, गणतंत्र थी लोकंकर विश्वास के बरकस करबा लगी एसआईआर बहुत जरूरी आए कहले मुख्यमंत्री। छात्र छात्री मानकु सड़क सुरक्षा बाबदे सचेतन करबा लगी आयबा काल राज्य सबु जिला नहेबा स्लोगान और चित्रांकन प्रतियोगिता। नवरात्र दुई नंबर दिने श्रद्धा और भक्ति सहित चली माँ ब्रह्मचारिणी पूजा और कर्नेल सीके नायडू ट्रॉफी थी बलांगीर गांधी स्टेडियम ठाने ओडिशा और बिहार भितर चली मैच। एथर पूरा खबर, गणतंत्र ते लोकंकर विश्वास के जबर करबार लगी स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन एसआईआर बहुत जरूरी आए बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। सामाजिक गणमाध्यम थी पोस्ट करी एसआईआर बाबदे मत देकरी श्री माझी कहिछन निर्वाचनी रेकर्ड निर्भरजोग्य रखबार आ स्वच्छ सठिक भोटर तालिका तैयार लगी एसआईआर दरकार आए। निर्भुल भोटर तालिका सुनिश्चित करबार खाली प्रशासनिक आवश्यकता नुहे इटा गणतंत्र थी लोकंकर विश्वास के जबर करबार क्षेत्र थी बहुत जरूरी आए बोली मुख्यमंत्री कहिछन। एसआईआर थी योग्य भोटर मानक सामिल करबार आउ अजोग्य मानक बाद देबार लगी राज्य निर्वाचन कमिशन तरफ भिन्न भिन्न पदक्षेप निया जाउछि बोली श्री माझी कहिछन। छात्र छात्री मानकर सड़क सुरक्षा बाबदे सचेतनता बढ़ावार उद्देश्य थी वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना निर्देश थी आयबा काल राज्य सबु जिला न सेवा संकल्प अभियान अवसर स्लोगान और चित्रांकन प्रतियोगितार आयोजन करा विभाग तरफ हेबार के थिबार ई प्रतियोगिता थी विद्यालय मानकर आठ नु दस श्रेणी छात्र छात्री माने भाग नेबे। छात्र छात्री माने सुरक्षित भावे घर के फिरून विषय वस्तु उपरे निजर सृजनशील चिंताधारा के चित्र और स्लोगान जरिए प्रदर्शित करबे। कार्यक्रम के सफल करबार लगी फी जिलार आंचलिक परिवहन अधिकारी नोडाल अफिसर भावे दायित्व थी रहबे। जिला शिक्षा अधिकारी सहयोग थी सबु विद्यालय न ई प्रतियोगिता परिचालना करा जिबा। पूरी शहर के स्वच्छ रखबार सहित पॉलीथिन आउ आवर्जना मुक्त करबार लगी समकर दायित्व रही बोली संबलपुर सांसद धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन। सेवा संकल्प अभियान अधीन थी पूरी न हेथिबार स्वच्छता कार्यक्रम थी जोग देकरी श्री प्रधान कहिछन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के गोटे जन आंदोलन थी बदलेछन। स्वच्छता और निष्ठा जरिए विकसित ओडिशा और विकसित भारत संकल्प साकार हो पार्बा। प्लास्टिक और पॉलीथिन परिवेश गो संपद आउ समुद्र जीवजंतु मानक लगे विपद सृष्टि करुचे। स्वच्छता थी गोटे नियमित सामाजिक अभ्यास आउ संस्कार थी बदलावार सहित ई दिगे लोक सचेतन करबार के हेबा बोली श्री प्रधान कहिछन। ए अवसर पूरी बड़दाण्ड जिला मुख्य चिकित्सालय परिसर के सफा करा जाइथिला। शारदीय नवरात्रि थी नौ दिन धरिकरी माँ दुर्गा और तांकर नौटा भिन्न भिन्न स्वरूप के विधि विधान थी पूजा करबार परंपरा रही। आज माँ दुई नंबर स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी पूजा कराऊ व्रतधारी माने निष्ठार सहित माँ को आराधना करुछन। ब्रह्मर अर्थ हेउचे तपस्या और चारिणीर अर्थ हेउचे तार अनुसरणकारी। माँ स्वरूप हेउचे तप त्याग संयम आउ अटल निष्ठार प्रतीक। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव को स्वामी हिसाब से पाइबार लगी देवी पार्वती कठोर तपस्या करते दीर्घ साधना असीम धैर्य और अटल विश्वास तपस्या के देखा अनन्य परिचय। तपस्विनी स्वरूप ही माँ ब्रह्मचारिणी गोटे हाथे जपामाली आ गोटे हाथे कमंडलु आ मुहे शांत आउ स्निग्ध भाव माँ रूप आमको स्वर पकई देसी जे कैंसी काम थी सफलता लगे धैर्य आउ निरंतर चेष्टा बहुत जरूरी है। नवरात्र दुई नंबर दिने माँ कटक चंडी आज राजराजेश्वरी बेशथी दर्शन देउथबार बेले संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समली अढ़े दिन धवलमुखी उतरु सिंदूर बन्ना बेशथी दर्शन देउछन। सेन्ता पुरीन दुर्गा माधव उपासना भिल चलीछे। ई अवसर आठ दिन तक गुप्त गुंडीचा विजय नीति हेबा। पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न शक्तिपीठ मानके आज देवींकर ब्रह्मचारिणी बेश सहित सुलह पूजा जाकजमक थी चलीछे। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक जीवन थी 25 वर्ष पूरा करिछन। जनसेवानु देश

0: हाँ दादा सुनलि बढ़िया लगला बोलू।
1: हाँ
0: तोर मोर तरफ नु आम शिल्पी के धन्यवाद गुटे दबा।
1: धन्यवाद देवा संगे संगे आमर बैठक के चासी भाई गुटे आइले ना।
0: हाय हाय
1: तो मुई कथाबार्ता करूचे तुई सुन।
0: चल सुनु।
2: आज्ञा आपनर परिचय टिक दियन।
3: मोर ना सीताराम साहू आ पोस्ट टिकरापड़ा तेसगा पंचायत वाणी पटना ब्लॉक।
2: आपन काना करसन आज्ञा?
3: मुई पनीपरिया चास करसि आज्ञा। अधिक करि
2: पनीपरिया भितरे तो छे बैगन पातलघंटा पोटल अछे आर भेणी अछे। तो आपन केनटा के खूब करि करसन?
3: मुई अधिक करि आज्ञा बैगन चास खा करसि। मिनिमम 4-5 वर्ष हला बैगन चास लगाउछे।
2: तो गुटे कथा कह लगे आपण तो बैगन चाष करुछन, ई बैगन चाष करबार आगरु आपण जमी के केनता करी प्रस्तुत करसन से विषय कह नै?
3: टाइकोड्रामा तो माटी रे बुनी दोछ आ गोबर संग मिसई करी, तापरे मासे परे चारा लगाउछु, तापरे मासे खणे गले ताके कुडी दोछ आ। कुडी देला परे अनुसार डीएपी पोटास यूरिया चारटा खत के मिसई करी बेले गत पिछा मिनिमम 50 ग्राम 100 ग्राम लेखा दौ।
2: एबे आपण एटा केते जागाती एटा चास करिछन आज्ञा?
3: मोटा 30 डिसमिल कराय जाय।
2: अच्छा गुटे कथा कहन जे आजकल तो नुआ नुआ वैरायटी आमर बैगन मने आसला ना, जेन आपण चारा लगाउछन कि जेन मंजी आपण लगाउछन, तो एटा केन ठानु आउछन आ का का वैरायटी चास करछन से बिषय कहन आज्ञा?
3: नपुरणा बैगन आज्ञा गुला गुलाटा सेटा का अधिक करे मुई 2 वर्ष हला लगाउछे।
2: अच्छा आगे तो आपण ई देसी बैगन करूथिले, आजकल तो आपण सरकारी जेन हाइब्रिड बैगन मने करूछन, तो ई आगो देसी बैगन रो केनता आयो होथिला, एबे ई सरकारी बैगन रो केनता आयो होछे से बिषय टी कहन आज्ञा?
3: देसी बैगन आज्ञा टिके फलवार कम फलुला, कहीं डालुआ होता टी लास्टिंग नहीं करूथे, मिनिमम 3 मास खंडे फलला पर सरी जाऊला। हाइब्रिड टा पानी दौले गोटे वर्ष पते फलुची।
2: अच्छा ये जेन बैगन चाष करूछन इने आपण पैन केंदार दौछन से विषय कहन
3: आज्ञा? ताके हुड़ा करा जाय छे, नाली बनाय जाय आज्ञा। सेटा मैट टिके सुखी आसले नाली रे छपा होछे। आरो
2: दिन के केथर पैन दौछन?
3: बैगन
2: चाष रो मुख्य समस्या है कीड़ा मकड़ा आज्ञा। तो जदि कीड़ा मकड़ा खाई देवा बोले बजार बिक्री नहीं हुए ना, तो ये कीड़ा मकड़ा खाईसी इतार लगी आप क्या व्यवस्था कर?
3: कॉन्फिटर पका होचे आरो कीड़ा लगी कोराजिन मासे के 15 दिन गुटर पका होचे।
2: तो इजन बैगन के अवस्था में बेसी कर कीड़ा खाईसी?
3: बादलिया पाग हवा बेले आज्ञा, आरो वर्षा दिनिया अधिक कर कीड़ा खाईसी।
2: अरे हमर खरा दिनिया

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेलों में तीनों सेनाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल का उद्घाटन किया। भारत ने तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। रणजी ट्रॉफी एलिट क्रिकेट मुकाबला जारी, रविंद्र जडेजा और रिंकू सिंह ने लगाए शतक। माया राजेश्वरन ने W35 लागोस टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के सम्मान से, जहां रक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों का आज सम्मानित किया। खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का मान बढ़ाया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में मदद मिली। रक्षा मंत्री ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। उन्होंने खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें निखारने में मिशन ओलंपिक विंग प्रशिक्षकों और सहयोगी कर्मचारियों की भूमिका की भी प्रशंसा की।
1: एक मेडल के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं, कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, फिर भी आपका हौसला

0: आपका जज्बा बराबर बुलंद रहता है। आपके पूरे संघर्ष के पीछे आपके कोच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके सपोर्ट स्टाफ, आपके फिजियो और जो न्यूट्रिनिस्ट हैं और परिवार, सभी का योगदान है। मैं उन सभी का आज अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं।
1: श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खेल सुविधाओं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के खिलाड़ी अगले ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने दिखा दिया है कि वे लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल, खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों, तकनीकी अधिकारियों और सहयोगी संस्थानों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए मलखम, योगासन और करी पट्टू को चुना है। भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स से जुड़े 10 देश इन खेलों में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का एक दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन करना है।
2: ब्रिक्स कंट्री आपस में अपनी इंडिजिनियस गेम्स के बारे में परफॉर्मेंस बताएं, परस्पर अपनी कंट्री में ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। इस उद्देश्य के साथ ये ब्रिक्स कंट्री इंडिजिनियस गेम्स डेमोंस्ट्रेशन आज अहमदाबाद में वीर सावरकर स्टेडियम में हो रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेडिशनल गेम्स की एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्धता है।
1: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके खेल को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रख रहा है। डॉक्टर मांडविया ने पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के तीन व्यावहारिक क्षेत्रों का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स के पारंपरिक और स्थानीय खेल न केवल ये दिखाने का मंच प्रदान करते हैं कि कोई खेल कैसा खेला जाता है, बल्कि उस इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक संदर्भ को भी उजागर करते हैं जो हर परंपरा को अनूठा बनाते हैं।
2: मुझे भी खुशी है, भारत ने ही ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था, ये प्रस्ताव को स्वीकार करा गया और भारत ने ही अपनी ही प्रेसिडेंसी के इयर्स के दरमियान ही ट्रेडिशनल डेमोंस्ट्रेशन गेम्स का अहमदाबाद वीर सावरकर स्टेडियम में आयोजित करके हमारी ब्रिक्स कंट्री के बीच में साझेदारी को महत्व दिया है, आगे बढ़ाया।
1: तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल के मैदान से लेकर पोडियम तक अवसर पैदा करके अपने खेल इकोसिस्टम को बदल रहा है। और जैसा डॉक्टर मांडविया ने भी बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर संडे ऑन साइकिल हो, इसमें 3 लाख से ज़्यादा जगहों पर 50 लाख से अधिक लोग साइकिलिंग कर चुके हैं और संडे ऑन साइकिल का 94 आयोजन हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो लगातार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में ही कड़ी चुनौती का सामना करेंगे। सुनते हैं रिपोर्ट।
3: डेनमार्क ओपन BWF वर्ल्ड टूर का एक महत्वपूर्ण सुपर 750 स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर प्रतियोगिता की बात करें तो पहले दौर में अनुभवी पीवी सिंधु का सामना विश्व की नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन एन से यंग से होगा। सिंधु को एन से यंग के खिलाफ अपने पिछले सभी 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उधर पुरुष वर्ग में लक्ष्य को पहले दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त चोउ तिएन चेन की चुनौती से पार पाना होगा। हाल में पीठ की चोट से परेशान लक्ष्य चोउ के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं आयुष शेट्टी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पहले दौर में आयुष का सामना इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें हराया था। किदांबी श्रीकांत फ्रांस के अर्नाउड मर्कल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी चुनौती पेश करेंगी। तन्वी का पहला मुकाबला जापान की नात्सुकी नेदेरा से जबकि अश्मिता का बुल्गारिया की कालोयाना निलंबतोवा से होगा। देविका थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोच

0: कुओंग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि उन्नति का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपना पहला मैच चीन की जोड़ी हे जी टिंग और रेन जियांग यू के खिलाफ खेलेगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनका पहला मुकाबला चीनी ताइपे के यान पी चेन और हिस हे पेई शान से होगा। वहीं ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतापर्णा पांडा का मुकाबला चीन की बाउली जिंग और काओ जी हान की जोड़ी से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कल के टूर्नामेंट में अहम मौका होगा पीवी सिंधु के लिए भी। हाल ही में आर्कटिक ओपन में उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई थी आयुष शेट्टी की अगर हम बात कर लिया, तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग, उन्नति हुड्डा और भारत के पुरुष डबल्स खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर भी सबकी निगाहें होंगी कि वो इस टूर्नामेंट में, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ जो यंग खिलाड़ी है, ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा पर भी सबकी निगाहें होंगी।

0: चालिहा, देविका सिहाग, उन्नति हुड्डा और भारत के पुरुष डबल्स खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर भी सबकी निगाहें होंगी कि वो इस टूर्नामेंट में, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ जो यंग खिलाड़ी है, ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा पर भी सबकी निगाहें होंगी। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने वेस्टइंडीज को 5 मैच की T20 श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में 14 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विशेष। भारत ने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2-1 से श्रृंखला में आगे हो गई भारतीय टीम, लेकिन कल का भी मुकाबला अगर देखा जाए तो क्लोज इनकाउंटर रहा, 14 रन से महज वेस्टइंडीज हारी है। तो बाकी जो दो मुकाबले बचे उसमें कैसी तस्वीर नजर आ रही है विशेष?
1: प्रशांत, दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि 250 रन चेस किए वेस्टइंडीज ने, हालांकि वो कंट्रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उनको 209 रन पर रोक दिया। बचे हुए दो मुकाबलों की बात करें तो कांटे की टक्कर होने वाली है, भारत को एक मुकाबला जीतना ही होगा सीरीज बचाने के लिए।
0: बिल्कुल, और कल गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि एक तरफ उम्मीद लग रही थी कि जब 250 रन अगर वेस्टइंडीज बनाती, जिस तरीके से चेस किया था 9 गेंद शेष रहते रांची में, उम्मीद की जा रही थी कि कल ये टारगेट जो वेस्टइंडीज को मिला था 224 रन का, इसको भी आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों का कैसा रहा उनके साथ प्रदर्शन?
1: अर्शदीप सिंह ने कल प्रशांत 4 ओवर में 3 विकेट झटके, लेकिन उन्होंने 44 रन दिए, तो इकोनॉमी उनकी 11 की रही। लेकिन अगर साथ देने की बात करें तो मयंक यादव, युवा गेंदबाज, ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए 8.5 की इकोनॉमी से। वहीं प्रिंस यादव ने भी 4 ओवर में 37 रन दिए। नमन धीर ने 2 विकेट लेकर काफी अहम योगदान दिया टीम में। वहीं अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया और नीतीश कुमार रेड्डी को भी 1 सफलता हाथ लगी। तो मिला जुला प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का,
0: मिला जुला प्रदर्शन रहा। और कल काफ़ी बदलाव भी किया गया था टीम में, प्रिंस यादव को टीम में जोड़ा गया था, उन्होंने अपने बल्लेबाजी से भी अहम रन बनाए और गेंदबाजी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन एक बल्लेबाज है जो लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो उनका नाम सबसे पहले आता, अभिषेक शर्मा ने कल भी अर्धशतकीय पारी खेली, 69 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन कल कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। कौन कौन से रिकॉर्ड है वो?
1: प्रशांत, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है, बराबरी की है सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड की, पर उन्होंने लगभग हर 7वीं गेंद पर छक्का लगाया है। वहीं सूर्य कुमार यादव जो उनसे पीछे हो गए हैं, उन्होंने हर 9वीं गेंद पर छक्का लगाया, तो 68 छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो अभिषेक शर्मा ने अपने नाम कर लिया। वहीं अगर 2000 रन बनाने की बात करें T20Is में, तो 1024 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 2000 रन पूरे कर लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम था, जिन्होंने 1164 गेंदों में 2000 रन बनाए थे।
0: जी, अब उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही लय वो बरकरार रखे श्रृंखला के बाकी मुकाबले में भी। उधर रणजी ट्रॉफी का भी मुकाबला खेला जा रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026-27 सीजन में अलग अलग टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। सभी टीमों को 4 वर्ग ABCD में बांटा गया है। मुकाबले 11 अक्टूबर से खेले जा रहे हैं और 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। विशेष, एक बार फिर घरेलू क्रिकेट श्रृंखला जो है अपने रोमांच पर है, और जहां हर राज्य की टीमें अपनी प्रतिस्पर्धा करती नजर आ रही है, 2 दिन का खेल समाप्त हो गया, क्या स्थिति है बाकी टीमों की?
1: प्रशांत, अगर बात करें ग्रुप ए के मुकाबलों की, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला जारी है, जहां 2 दिन का खेल समाप्त होते तक उत्तर प्रदेश के पास 496 रन की बढ़त है। पहली पारी में 540 रन उत्तर प्रदेश ने बनाए थे। वहीं दूसरे मुकाबले में बरोड़ा और गोवा के बीच मुकाबला चल रहा है, जहां गोवा 467 रन से पीछे है। अगर विदर्भ और पुडुचेरी के मुकाबले की बात करें तो पुडुचेरी 321 रन से पीछे है। वहीं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में मध्य प्रदेश के पास 135 रन की लीड है और वो दूसरी पारी में मुकाबला कर रही हैं।
0: और कई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, कैसा रहा है उनका इन 2 दिनों के बीच प्रदर्शन?
1: प्रशांत, अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह ने भी शतक लगाया है। जडेजा ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए 209 गेंदों का सामना किया और 102 रन की दमदार पारी खेली। वहीं बिहार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने भी शतकीय पारी खेली, जिन्होंने 168 गेंदों पर 112 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और दिल्ली के खिलाफ 4 विकेट झटके।
0: जी, काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। अभी जम्मू कश्मीर जो है वो उसके डिफेंडिंग चैंपियन है और लगातार जम्मू कश्मीर से कई कई खिलाड़ी टीम में आ भी रहे हैं। औकिब नबी जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह बना चुके हैं और अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है ग्रुप ए बी सी डी में, जैसा कि हमने आपको बताया।

0: और अच्छा प्रदर्शन अभी जारी है खिलाड़ियों का, और देखना दिलचस्प होगा कि बाकी मुकाबलों में कैसा खेल प्रदर्शन होता है। अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पंजाब में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगा। मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष टीम अपना छठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: जालंधर और मोहाली में खेले जाने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में भारत इस वर्ष की शुरुआत में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक सफलतापूर्वक बचाने के बाद अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगा। साल 2011 में पहले संस्करण को जीतने के बाद से भारत ने अलग अलग परिस्थितियों में महाद्वीपीय खिताब जीता है, जिसमे शूट आउट में जीत, फाइनल में करीबी जीत, संयुक्त चैंपियनशिप और घरेलू मैदान पर मलेशिया के खिलाफ वापसी शामिल है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले गए पहले संस्करण को अपने नाम किया था, जहां फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को शूट आउट में 4-2 से हराया। रेगुलेशन समय में फाइनल गोल रहित रहने के बाद ये जीत मिली थी। इस जीत ने भारत को टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बनाया, जिसमें 6 टीमें शामिल थी। 5 साल बाद भारत ने मलेशिया के क्वांटन में साल 2016 के फाइनल में पाकिस्तान को 3-2 से मात देकर अपना दूसरा खिताब जीता था।
0: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुर्तगाल में भारतीय टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन ने W35 लागोस टूर्नामेंट अपने नाम किया। ये उनका पहला पेशेवर खिताब है। माया ने कल खेले गए फाइनल में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। इस जीत से ये 17 वर्षीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा के बाद पेशेवर सिंगल्स खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि

0: संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने

0: गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
3: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
2: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
4: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
2: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट

0: कार्नेगी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK, targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed the country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side, or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods. India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
1: Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. You are an aging population, I'm a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I'll remain below 30. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर, भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7176 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन

0: वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको
1: जी
0: हमने सॉल्व करने की कोशिश की है
1: बहुत अच्छा।
0: इसमें।
1: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
0: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूँ तो पहली चीज़ थी रजिस्ट्रेशन।
1: जी
0: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
1: जी
0: तो उसे हमने सरल किया, ना सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया।
1: जी
0: फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए हैं,
1: जी
0: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या उसे
1: आसान हो गया।
0: उसे हो गया। कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है, वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
1: जी
0: सो एक ट्रस्ट दी टैक्स पेयर का हमारा
1: बन रहा है
0: वो हमने एक शुरू किया है।
1: जी। इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या ऐसे सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
0: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल,
1: जी
0: एक्सपोर्टर्स को रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे, अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत सिस्टम से मिल जाएगा।
1: वेरी गुड
0: तो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके 1 दिन 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा।
1: बहुत बड़ी सुविधा
0: बड़ी सुविधा
1: जी।
0: ऐसी एक कैश लेजर का रिफंड होता है, छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो
1: जी
0: करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड हो जाएगा, और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू।
1: जी
0: सो ऐसी कई चीज़ें हैं, छोटे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, की इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट का कम है, तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया। 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में, आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा,
1: बहुत बड़ी
0: तो
1: सुविधा
0: उससे बहुत आराम हो जाएगा
1: जी।
0: व्यापारियों को।
1: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे, टैक्स समय पे नहीं भर पाए या कुछ तो इस तरह से, उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है
0: जी, अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया जीएसटी से,
1: जी।
0: तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा, हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहाँ हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट वो करने को,
1: जी
0: तो उसके भी हमने कई कान जो जहाँ पर लिटिक वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं, तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी कि गलत इंटरप्रिटेशन, गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया, फौजदारी का मुकदमा कर दिया,
1: तो
0: वो चीज
1: मुकदमेबाजी से अब छूट मिल
0: छूट
1: गई
0: मिल जाएगी।
1: जी। और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, पहले श्रोता हरिद्वार से हैं रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
2: नमस्कार सर जी,
1: जी पूछिए
2: सर्दी
1: सवाल
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: जी
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी,
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
1: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं सर, अब की बार जो 57वीं बैठक हुई इसमें क्या कर सुधार हुए हैं, और सर मैं जानना चाहता हूँ कि अबकी बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है, ये मेरा सवाल रहेगा सर।
0: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रखी रही है जीएसटी में। सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसके जिस पे आपको अरेस्ट जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
1: तो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो
0: जी
1: गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
0: जी
1: कैसी थी और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया?
0: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो
1: जी
0: जीएसटी ने अपने में समेट लिए हैं, उसमें एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था,
1: जी
0: वो एक अलग, उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था। वैट का रजिस्ट्रेशन लेना था, वैट का अलग कंप्लायंस था, एक स्टेट में ही उसका दायरा था, तो एक स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था अपना सामान बेचता था तो उसे क्रेडिट

0: मिलता था
1: जी।
0: तो जीएसटी ने क्या किया, ये जो और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था, जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है, प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया है। तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं रहेगा कि मैं स्टेट में नहीं हूँ
1: जी।
0: तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक उसको एक जैसा कर दिया, उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया।
1: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था
0: जी,
1: वो कितना सफल हो सका है?
0: काफी हो गए, बहुत सफल हुआ है। अगर आप देखिए जीएसटी में, जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 56-66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे, करदाता थे, अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में,
1: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए
0: जी। तो जी, जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी, जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे हैं, वो भी जीएसटी में आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
1: लाभ मिल रहा है जी। और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजीव।

0: जी,
1: अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में,
0: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए
1: जी। तो जी, जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40,00,000 और 20,00,000 उससे नीचे हैं, वो भी जीएसटी में आ रहे हैं क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
0: लाभ मिल रहा है जी। और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार
0: जी। सवाल पूछिए।
2: जो जो एक विकील शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे, तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ है, तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा में शांति दे।
0: जी,
2: सवाल ये था जी, जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे, इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है, इसके बारे में जानना। नमस्कार।
1: देखिए, जीएसटी विभाग तो रेट नहीं वो डिसाइड करता, वो तो मार्केट डिसाइड करता है, पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने कि अंदेशा किया कि रेट घट सकता है या बढ़ सकता है, तो लोग अपना वो कर देते हैं, परंतु इस पे जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है, जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
0: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
1: कि जीएसटी की खासतौर पर 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए, 5% और 18% का रेट रहा, 12% और 40% का रेट
0: समाप्त कर दिया।
1: सो रेट इसलिए किया गया, और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है लाभ है वो ग्राहकों को पहुंचा जाए, कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सकें, रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
0: जी बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों ने खरीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी, फ्रिज, इन सब पे कितनी सारी फायदा हुआ था
1: जी। अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया
0: जी।
1: अब हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2,00,000 करोड़ से कम आता है, तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू
0: जी।
1: तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू
0: परचेज पावर बढ़ी, उससे रेवेन्यू बढ़ा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, वो ऐसा ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे जीरो?
1: जनरली फूड आइटम्स थे, जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीज़ें थी, उसको उस पर 5% से 0% कर दिया गया रेट। दवाइयों पे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उन पे हमने 5% से 0% काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5% से 0% हुआ, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज़, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं, स्कूल की पेंसिल कॉपी नोटबुक, उन सब का दाम जीरो कर दिया, कि क्योंकि आगे चलते क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स जीरो कर दिए।
0: कुल मिला के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
3: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है
0: जी, बोलिए।
3: सर, पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
0: जी,
3: तो क्या उसे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया है
0: जी।
3: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा बड़ा मतलब आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट सारा परचेज है
0: जी।
3: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए, तो हमारे पास आईजीएसटी तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
0: जी,
3: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं लोकल करते हैं तो आधा आईजीएसटी आधा सीजीएसटी हो जाता है। तो आईजीएसटी इकट्ठा है तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए
0: जी।
3: ये 2 क्वेश्चन है सर
1: जी। पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन, एक उसे एक

0: ऊपर अपने अधिकारी से, जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप CBIC वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जब अधिकारी आए उससे पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप, उसका आई कार्ड चेक करिए कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक DIN नंबर होगा, DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए CBIC की वेबसाइट पे, हमने लिंक दिया हुआ है, गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहाँ चेक करिए कि सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है IGST क्रेडिट आएगा, तो IGST क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में, पंजाब से आपके पास आ रहा है IGST का, आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं, तो उसको आप IGST को यूज़ कर सकते हैं CGST SGST अपना टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना IGST क्रेडिट को यूज़ करिए, CGST SGST क्रेडिट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिया, तो जो मतलब ये जो GST सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है मतलब कैसे तय होता है, थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी आपने महाराष्ट्र में कोई चीज़ खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज़ खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उस चीज़ की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर CGST और SGST सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स है, 2.5% CGST, 2.5% स्टेट GST आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट GST है वो सीधे GST स्टेट को जाता है। दूसरा है, जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास मान लीजिए आप ही कोई चीज़ दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज़ का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज़ को उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो GST रेवेन्यू, जो भी GST है उस चीज़ पे, उसे 50% उस स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और GSTN जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और कई एक SOP बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको सुधार सकें, ताकि ये सेटलमेंट वाला जो इशू है, जो राज्य का पैसा है, वो इशू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये है मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि GST क्या छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, और GST को साल में कितने बार भरना होता है?
0: GST देखिए, GST में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपए अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फ़ायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका, उसे इनपुट वो जो भी उसने चीज़ें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की GST जो पे करना है उसमें वो यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर

0: सकता है उस क्रेडिट को।
1: बिल्कुल।
0: रिटर्न्स हैं जीएसटी में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर जीएसटी में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा। दूसरा, इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा। तो अभी जो 12 साल में हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका तीन महीने में एक बार पेमेंट करेंगे। तो उससे काफ़ी सरल हो जाएगा रिटर्न, छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
2: तो हमें जीएसटी देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें जीएसटी रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना जीएसटी हमें हमसे लिया जा रहा है।
0: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज़ की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर जीएसटी रेट। अगर कोई चीज़ आप लेते हैं इस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में कि उसमें जीएसटी कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पर लिखा रहेगा।
1: गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
0: जी, जीएसटी आप सोचिए एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था
1: जी,
0: कानून एक ही था पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। जीएसटी में सब ने अपनी पावर्स दी, सब ने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है। आप सोचिए 57 मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे
1: जी,
0: वरना कभी वोटिंग नहीं होती, हर निर्णय
1: सर्वसम्मति से
0: होता है, कंसेंसस से होता है, जहां हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है। वहां तक, यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती हैं कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी स्टेट्स अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज पे डिसाइड करना, एक चीज पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जीएसटी का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
1: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी वरदान साबित हुआ है।
0: जीएसटी ने छोटे व्यापारी के लिए खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया जीएसटी में, उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया है उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ईसीओ के माध्यम से अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ईसीओ का जो वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहां पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है। तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना कर भुगतान कर पा, अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो जीएसटी ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
1: एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
0: अगर उसका 40 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड उसका टर्नओवर,
1: बिक्री हो जाती है,
0: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है
1: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा
0: जी। पर अगर आप देखें उसको, उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया
1: जी,
0: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको इस्तेमाल
1: खाते में आ जाएगा
0: तो उसको लाभ है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर। अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उस

0: अपने पूरा इनपुट
1: सारा बेकार चला जाएगा,
0: वो सारा बेकार चला गया वो।
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को जीएसटी को लेकर आपकी क्या सलाह है?
0: नए स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी, पहला तो रजिस्ट्रेशन सरल होना है। रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया, उसके लिए हमारे जीएसटी सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद। दूसरा, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया। रिटर्न, उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए,
1: लिमिटेड
0: रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी। 10,000 रुपये से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको, तो छोटे अमाउंट के नोटिस कम हो गए उसके लिए। जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है, तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रामाशंकर वाजपेयी जी। रामाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें?
0: देखिए, जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है?
0: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है
1: जी,
0: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है, हरासमेंट होता है, तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। अब क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला
1: जी,
0: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
1: कई स्टेट
0: पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले कोई चेक नहीं कर।
1: तो बहुत बड़ी सुविधा,
0: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता है, समय लगता था चेकिंग में और सब में, तो वो चीज़ बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे, अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है, आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर के अप्रूवल चाहिए आपको कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं, आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है
1: जी,
0: तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
1: गौरव जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है?
0: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है
1: जी,
0: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को
1: जी,
0: वो जीएसटी ने दिलाई है।
1: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है।
0: अब हमारे यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से उठ बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं
1: जी,
0: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए। जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफ़ी कैश बेस्ड थी, काफ़ी वो थी, बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया है जीएसटी।
1: तो श्रोताओं, जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है, सुधार की ये यात्रा जारी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल

कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 毛旭，毛旭，毛旭，快点出去！
1: 爷，干哈去？可就这婆？
0: 干哪？去给毛旭？
1: 干哪？他们爷爸不？干哪？所以他到他们家去没得去呢？
0: 毛旭，我哪没得来？干哪？我都跑了好远的，快点去！
1: 谁干哪？哪行？爸爸，几天的呢？来你过来再去去，他那口子可不没路呢。
0: घन कुआडे जाईथिला मु जानिछे
1: तमे जानिछ कोह बापा तमर मंगल हबो आसो घर भीतर को आसो
0: मौसी घन जाईथिला हैदराबाद दातो नै कहथिला मारो दुख दूर करबी एटी तो सेमिति आय करि होउनी हां सेठी भलो खटुथिला कोन हैला जे के जानी दिने पळे आसिला जा को मौसी घन भारी भलो मिला
1: घन मोर खूब सादा सीधा पिला पुओ तमे ता कथा जानिछ जदी कुह बाबू मते किछि भी लुचानी
0: लुचेले कोन होबो जे हौ आसिले कहि दबो मौसी मदरा जाइसिला बोली जाउची मौसी नमस्कार

0: बड़ हैला माँ तू आउ किछ चिंता करना किछ भावना तू आसी गलु माने मु शीघ्र ठीक हो जीवी
1: तू बुझी परिबुनि रे बापा तोरे अवस्था देखि मु छाती किमिति फटी जाउ छी रे पु काहे कि एते बड़ काम गलु रे धन तते तो मु के बेग दिने किछ भी कोई नहीं
0: नाही मां तू सिना किछ कहु नथलु हेले हेले घरे शिक्षित युवक बसिथिबो आउ ता मां खटुथिबो ए कथा भाबिला ओळु को मो छाती फाटी जाउथला मां कोंटा फुडी हला बळी लागुताए मां चेष्टा टिए करथिली केवल चेष्टा टिए करथिली मां किंतु हारी गली हारी गली मां
1: हारी गला लोक पछ घुंचा दिए नि रे पु तू तो सामने

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଧନ୍ଦୁତାଇ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ। ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଗ ଦେଶ ଓ ସ୍ୱାହା। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜି। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और